0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। मलेशिया की पुलिस ने धोखाधड़ी के ग्रोहों के ठिकानों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2,200 से जायद अफराद को धोखाबाजी के शुबे में गिरफ्तार किया है। 5 जापानी शहरी भी गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं। पुलिस ने मंगल के रोज सहाफियों को बताया कि उन्होंने जनवरी से अप्रैल तक मुल्क भर में मुबैना जुराम पेशा ग्रोहों के ठिकानों पर छापे मारे और मजमुई तौर पर 2,251 अफराद को हिरासत में लिया। बावर किया जाता है कि ये अफराद धोखाधही की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। जनवरी के आखिर से फरवरी के शुरू के दरमियान क्रैकडाउन में गिरफ्तार किए जाने वाले 430 मुश्तबा धोखाबाजों में से 270 गैर मुल्की शहरी पाए गए, जिनमें चीनी और इंडोनेशियाई शहरियों के साथ साथ 5 जापानी भी शामिल थे। पुलिस का कहना है कि ये ग्रोह आम घरों, कमर्शियल इमारतों और दीगर मकामात से सरगर्म अमल थे, जिनकी तज़ीनो आराइश इस तरह की गई थी कि धोखाधही का अड्डा होने की इनकी असल शनाख्त को छुपाया जा सके। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने जापानी हुकूमत की दरख्वास्त पर 7 आबाई आइनू बाशिंदों की बाकियात जापान को वापस कर दी हैं। मंगल को अजायब घर में सुपुर्दगी की एक तकरीब मुनक्किद की गई। आइनू बाशिंदों से मुतलिका पॉलिसियों के जापानी वजीर किकावादा हितोशी इसमें शामिल थे। म्यूजियम के डायरेक्टर ने सफ़ेद कपड़े में लिपटे बॉक्सेस में बाकियात पेश की। इनमें से बाज़ बाकियात होकाइडो में शुमाली जापान के याकुमो और मोरी कस्बों में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई थी। आइनू एसोसिएशन होकाइडो के एग्जेक्टिव डायरेक्टर ओकावा मासारू ने कहा कि वो अपने आबाओ अजदाद के एहसास के बारे में सिर्फ ये सोचकर जज्बात से मगलूब हो रहे हैं कि उन्होंने कई साल गैर मुल्की सरजमीन में गुजारे। बाकियात में से कुछ 1866 में उस वक़्त के बरतानवी मंदूब की जानिब से म्यूजियम को अतिया की गई थी और ये गुज़श्ता 160 साल से वहाँ मौजूद थी। अगरचे तफसीलात नामालूम हैं, लेकिन बावर किया जाता है कि इन्हें तहकीकी मकासद के लिए जापान से बाहर ले जाया गया था। ये चौथा मौका है कि मकामी आइनू बाशिंदों की बाकियात बैरून मुल्क से वापस लाई गई हैं। इससे कबल गुज़श्त साल एडनबरा यूनिवर्सिटी से भी बाकियात वतन वापस लाई गई थी। इन बाकियात को होकाइडो के शिरा ओई पार्क और उपोपोई नेशनल आइनू म्यूजियम के यादगारी मकाम पर दफन किया जाएगा। जापान में मंगल के रोज बच्चों का सालाना दिन मनाया गया। बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा की दुआ के लिए टोक्यो के एक मशहूर मकाम के करीब कार्प मछली की शक्ल के तकरीबन 1,000 स्ट्रीमर या झंडे लहराए गए। इस सालाना मंजर को देखने के लिए लोगों ने जोक दर जोक सुमिदा वार्ड में वाके टोक्यो स्काई ट्री का रुख किया। रंग बिरंगे झंडे 634 मीटर बुलंद मीनार के दामन में हवा के दोष पर फड़फड़ा रहे थे। खानदानों और सियाहों के लिए तस्वीर बनाने का यह बेहतरीन मौका था। ये विंड सॉक्स कोइनोबोरी कहलाती हैं। इन्हें ह्योगो प्रीफेक्चर के कातोउ सिटी और जापान में दीगर मारूफ प्रोडक्शन साइट्स पर तैयार किया गया है। आमतौर पर ये स्ट्रीमर्स कोई या कार्प मछली के मुशाबा होते हैं, लेकिन टोक्यो स्काई ट्री पर लहराते कुछ झंडे गार्डन बाम मछली के मुशाबा थे, जिसके जिस्म पर धब्बे होते हैं। एक करीबी मछली घर में मछली की ये किस्म बहुत ज्यादा मकबूल है। एक 7 साल बच्ची ने कहा कि स्ट्रीमर्स रंगीन और खूबसूरत थे। अपने 2 साल बेटे के साथ आने वाले एक शख्स ने कहा कि धूप वाले नीले आसमान के नीचे कार्प स्ट्रीमर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने कहा कि यौम इतफाल मनाने के लिए यहाँ आने पर वो बहुत खुश है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपनाए हुरमुज से महफूज जहाज़रानी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी ऑपरेशन में तवक्कुफ का ऐलान किया है। और जापान के वजीर सनत आकाजावा रियोसे का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने खाम तेल की मुस्तहकम फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जापान के साथ तआवुन करने पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 6 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला चैन और वायला कवानो से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अमेरिकी अभियान को विराम देने की घोषणा की है। ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तथाकथित प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि ईरान के साथ कोई समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है और उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं या नहीं। उन्होंने लिखा कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में बढ़िया प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अन्य देशों ने भी विराम का अनुरोध किया था। ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बढ़िया प्रगति से क्या तात्पर्य है। उन्होंने यह भी लिखा कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी प्रभावी रहेगी। जापान के उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई ने कहा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जापान के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आकाजावा ने मंगलवार को फ्रांस में पत्रकारों से बात की। सोमवार और मंगलवार को उन्होंने इन दो तेल उत्पादक देशों का ऐसे समय में दौरा किया जब हॉर्मूज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आकाजावा का कहना है कि उन्होंने और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए सहयोग करने पर सहमति जताई है। उधर संयुक्त अरब अमीरात में आकाजावा ने उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की। जापान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल की आपूर्ति में जून से लगातार वृद्धि करने के तरीके प्रस्तावित किए गए थे। माना जा रहा है कि उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आकाजावा ने पत्रकारों को बताया कि पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों ने वैकल्पिक मार्गों की खोज और भंडार का विस्तार करके अपनी आपूर्ति में लचीलापन बढ़ाने के लिए नए विचार दिए हैं। जापान और फिलीपींस के रक्षा मंत्रियों ने जापान के इस्तेमाल शुदा विध्वंसक जहाजों और अन्य रक्षा उपकरणों के विदेशी हस्तांतरण को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए अपने मंत्रालयों के बीच एक कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता जापान के नियम में हालिया परिवर्तन के बाद हुआ है जो अब उसे सैद्धांतिक रूप से घातक हथियारों का निर्यात करने की अनुमति देता है। जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और फिलीपींस में उनके समकक्ष गिल्बर्टो तेओदोरो ने मंगलवार शाम फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। बैठक की शुरुआत में कोइजुमी ने कहा कि जापान और फिलीपींस के बीच सहयोग अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पहले से कहीं अधिक जटिल और तनावपूर्ण हो गई है। दोनों मंत्रियों ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे इस बात पर सहमत हुए कि कार्यबल जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले आबू कुमा श्रेणी के विध्वंसक एस्कॉर्ट जहाजों के साथ साथ TC-90 विमानों को फिलीपींस को शीघ्र हस्तांतरित करने के लिए ठोस कदमों पर चर्चा करेगा।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: मलेशियाई पुलिस ने स्कैम गिरोहों के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के संदेह में 2,200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 5 जापानी नागरिक भी हैं। पुलिस ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि उन्होंने जनवरी से अप्रैल तक देश भर में कथित तौर पर आपराधिक गिरोहों के ठिकानों पर छापेमारी की और धोखाधड़ी के मामलों में संलिप्त होने के संदेह में कुल 2,251 लोगों को हिरासत में लिया। जनवरी अंत और फरवरी के बीच हुई धरपकड़ में 430 संदिग्ध जालसाजों में से 270 विदेशी नागरिक थे, जिनमें चीनी और इंडोनेशियाई नागरिकों के साथ साथ 5 जापानी नागरिक भी थे। पुलिस ने कहा कि इन गिरोहों के साधारण आवासीय व्यावसायिक इमारतों और अन्य भवनों में ठिकाने थे, जिनमें काफी बदलाव किए गए थे ताकि पता न चल सके कि वे ठगी के अड्डे हैं। लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने जापान सरकार के अनुरोध पर 7 आइनू लोगों की अस्थियां जापान को लौटा दी हैं। अस्थियां सौंपने का एक समारोह मंगलवार को संग्रहालय में आयोजित किया गया, जिसमें जापान के आइनू संबंधी नीति मंत्री खिकावादा हितोशी उपस्थित थे। संग्रहालय के निदेशक ने सफेद कपड़ों में लिपटे डिब्बों में अस्थियों को वापस किया। इनमें से कुछ अस्थियां उत्तरी जापान के होक्काइडो प्रीफेक्चर के याकुमो और मोरी नगरों में खुदाई में मिली थीं। होक्काइडो के आइनू संगठन के कार्यकारी निदेशक ओकावा मासारू ने कहा कि कई साल विदेशी धरती में फंसे पूर्वजों की भावनाओं के बारे में सोचकर ही वे भावुक हो उठते हैं। इन अस्थियों में से कुछ ऐसी हैं जिन्हें 1866 में ब्रिटेन के तत्कालीन दूत द्वारा संग्रहालय को दान किया गया था और 160 वर्षों से संग्रहालय में रखी हुई थी। माना जाता है कि इन्हें शोध उद्देश्यों के लिए जापान से बाहर ले जाया गया था, हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी अब तक नहीं मालूम है। आइनू लोगों की अस्थियां चौथी बार विदेशों से वापस लाई गई हैं। इससे पहले पिछले साल एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से अस्थियों को वापस लाया गया था। अस्थियों को होक्काइडो के शिराओई नगर में उपोपोई राष्ट्रीय आइनू संग्रहालय एवं उद्यान में एक स्मारक स्थल में रखा जाएगा। जापान में मंगलवार को बाल दिवस मनाया गया। बच्चों के स्वस्थ विकास की कामना के लिए टोक्यो के एक प्रसिद्ध स्थल के पास कार्प मछली के आकार की लगभग 1,000 पताकाएं फहराई गईं। इस वार्षिक आयोजन के लिए टोक्यो के सुमिदा वार्ड में स्थित स्काई ट्री पर लोगों की भीड़ देखी गई। 634 मीटर ऊंचे टावर के नीचे रंग बिरंगी पताकाएं हवा में लहरा रही थी, जिससे लोगों को शानदार तस्वीरें लेने का अवसर मिला। कोई नोबोरी नामक इन पताकाओं को ह्योगो प्रीफेक्चर के खातो शहर और जापान के अन्य प्रमुख उत्पादन स्थलों में बनाया गया था। ये पताकाएं आमतौर पर कोई यानी कार्प मछली के आकार में बनाई जाती हैं, लेकिन टोक्यो स्काई ट्री में प्रदर्शित कुछ पताकाएं चित्तीदार गार्डन ईल मछली से मिलती जुलती थीं, जो पास के एक मछली घर में रखी मछली की लोकप्रिय प्रजाति है। एक 7 वर्षीय लड़की ने कहा कि ये पताकाएं रंग बिरंगी और सुंदर थीं। 2 साल के बेटे के साथ घूमने आए एक व्यक्ति ने कहा कि खिली धूप में कार्प मछली की पताकाएं बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा कि बाल दिवस मनाने के लिए वहां आने की उसे खुशी है।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अमरीकी अभियान को विराम देने की घोषणा की है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।